सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त गुरुवाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

0: ने की जय। श्री राम लला भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम।
1: जय श्री राम।
0: जय जय।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 शब्दोमत से जारी है। ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यहाँ आस्था, समर्पण, साहस और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन मार्गों से होते हुए शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियाँ, बहती नदियाँ और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण जो है, सभी तीर्थ यात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में लिए जाता है। ये यात्रा हमें केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है।

कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने नुनवन बेस कैंप पहलगाम का दौरा किया, यात्रियों की सहूलियत का जायज़ा भी लिया। उनका कहना था कि अमरनाथ यात्रा कामयाब, यात्रियों की सलामती और सहूलत प्रशासन की अवलीन तरजीह है। श्रोता आपको बताते चले, यात्रा के पहले 15 दिनों में 3.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अभी तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। खुशगवार मौसम में दोनों मार्गों पर बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। ताहम कल जो है श्रीनगर में इस वर्ष का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया, 35 डिग्री सेल्सियस के पार जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता ऊपरी क्षेत्र में जो है मौसम खुशगवार है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग और बालटल के मार्ग पर जो है मौसम खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम के बीच शिव भक्त जो है पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। शिवजी से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी श्रृंखला आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में यहाँ जम्मू में भी उत्साह बना हुआ है और हजारों तीर्थ यात्री बिना किसी बाधा के पिछले लगभग 15 से 16 दिनों के अंदर लगातार यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से रोजाना रवाना होते देखा जा सकता है। उनमें वो उत्साह और जो जोश खरोश है वो बराबर जारी है और लगातार दोनों मार्गों की तरफ तीर्थ यात्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इस बीच जम्मू में हालांकि गर्मी और उमस लगातार जारी है, यहाँ मौसम जो है अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो दिन का तापमान होता है वो बढ़ा हुआ होता है और उसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि जो तीर्थ यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालु भी होते हैं उन्हें भी तकलीफ का सामना जरूर है। लेकिन मौसम की इस मिजाज के बावजूद तीर्थ यात्रा में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है और तीर्थ यात्री लगातार अपना पंजीकरण कराते और दूसरी प्रक्रियाओं में व्यस्त होकर तीर्थ यात्रा की तैयारी में लगे हुए होते हैं और इस दौरान संचालित तरीके से तीर्थ यात्रियों को भगवती नगर बेस कैंप ले जाया जाता है, जहां तीर्थ यात्री रोजाना यहां से घाटी की और बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ प्रवेश करते हैं। एक जो ये समा बना हुआ है और जो ये उत्साह का माहौल है ये पूरी तरह से बना हुआ है। इस दौरान तीर्थ यात्रा को सफल और सुरक्षित संचालन को लेकर भी उच्च अधिकारी

अधिकारियों से लेकर निचली स्थल पर भी समीक्षा बैठकें होती है और तीर्थ यात्रा को आसान और सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस पर रोजाना बदलाव होते हैं। तीर्थ यात्रियों को किस तरह से आसानी और यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए, उस उन्हीं दिशा निर्देशों पर रोजाना समीक्षा भी होती है। और इसमें न सिर्फ अधिकारियों का रोल होता है बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यात्रा से जुड़े जो लंगर चलाने वाले लोग हैं, वो सब जो संस्थाएं हैं वो मिलकर बदलाव को हर दिन बदलाव के साथ हर दिन अपना कार्य कर रही है, जिसकी वजह से यात्रा जो है वो बेहतरीन अंदाज में चल रही है। इसी दौरान कल शुक्रवार को भी उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी शिव कुमार ने सुरक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी सतर्कता के और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। ये जो उधमपुर और रियासी जोन है इसी से होकर ये तीर्थ यात्रा घाटी की ओर रवाना होती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्व तरीन जो है ये रास्ता है, जिसको लेकर कल डीआईजी निशु कुमार ने बैठक की और बैठक के दौरान ड्यूटी निभाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यात्रा मार्ग को मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था, काफिलों की आवाजाही और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी को की विस्तृत जानकारी भी ली और अपनी तरफ से जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए उनमें उन्होंने इन स्थानों पर बेहतर तरीके से ड्यूटी निभाने की भी बात कही। इस दौरान कल जैसा कि हम आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी कि उपराज्यपाल ने भी श्री अमरनाथ जी यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ननवन बेस कैंप का दौरा किया। लगातार ये दौरे चल रहे हैं। यहाँ जम्मू में भी इससे पहले उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया, उससे पहले उन्होंने यहाँ अन्य जो बेस कैंप है उनका दौरा किया। तो इन दौरों का मकसद ये होता है कि जो नीचे काम कर रहे अधिकारी हैं उन्हें किस तरह से देश से कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं में किस तरह से ये उत्साह और ये जो जोश और खरोश है उसको जारी रख सके। और वहाँ जो बेस कैंप्स पर इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का जो प्रबंधन है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए और स्थानीय निवासी और सेवा प्रदाता जो है इसमें किस तरह से ये यात्रियों को बेहतर से बेहतर प्रबंधन दे सके और यात्रा को सफल बनाने के लिए जो सक्रिय रूप से जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से और दिशा निर्देश दिए जाए, उनके साथ किस तरह से और बेहतर यात्रा को बनाए रखा जाए, उसी को लेकर ये सारी जो जो जो जायजा लिया जाता है उसी को लेकर ये सब बातें होती है और उसी को लेकर ये बैठकें भी होती है, चाहे वो अधिकारियों की बैठकें हो या खुद उपराज्यपाल की बैठकें हो, खुद उनका जो पहुंचना हो, ये सब उसी को लेकर एक मार्गदर्शन है और ताकि यात्रा में किसी तरह की कोई असफलता ना हो और यात्रा सफल तरीके से जारी रहे। इस दौरान पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, दोनों मार्गों पर पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और पहले दिन से यात्रा में परिवार पर्यावरण का जो रोल है, क्योंकि यात्रा जो है ये पहाड़ी श्रृंखला से होकर जाती है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, इन जगहों से होकर जाना और पर्यावरण को स्वच्छता के साथ जोड़ने का जो उद्देश्य है इस यात्रा का वो लगातार जारी है। चाहे जम्मू में भी हम अपनी रिपोर्ट्स में कह चुके हैं कि किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो यहाँ की जो जो अधिकारी है वो किस तरह से पर्यावरण को लेकर बहुत सीरियस भी है और इसी तरह से श्रीनगर या इस मार्ग
के दौरान जो पहाड़ी श्रृंखलाओं का जो सिलसिला है उसमें किस तरह से पर्यावरण को बेहतर रखा जाए और शिविरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए ताकि जो यात्रा है वो बेहतरीन पर्यावरण के इस माहौल में जारी रह सके। वही इस दौरान अमरनाथ यात्रा को

कर श्रद्धालुओं में किसी तरह का भ्रम न फैले या उत्साह जोश और हर्षोल्लास यूं ही बना रहे, उसके लिए धार्मिक संगठनों ने अपील बर्फानी की यात्रा को लेकर धार्मिक सनातन धर्म के जो जम्मू कश्मीर सनातन धर्म के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपील की है।

0: विवेचने दलों से बिना किसी संशय के यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जम्मू में कहा कि चंदलवाड़ी, पिशुटाप, शिशनाग, महागुंडा, पंचदरनी और पूरे यात्रा मार्ग का अपना एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार ने यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा, ठहरने, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं को व्यापक प्रबंधन किया है और ये जो पूरी और सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसका प्रमाण श्रद्धालुओं की 3.5 लाख की संख्या का बाबा बर्फानी के दर्शन करना है। तो एक चारों तरफ से जो ये एक अपील है और जो जिस तरह से बातें हो रही हैं वो एक यात्रा में और उत्साह और जोश भर देती है और वो उत्साह और जोश जम्मू में बराबर जारी है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे जावेद मेहरा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे। आपको बताते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का 17वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 148 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री आज वादी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 2,650 पुरुष, 858 महिलाएँ, 1 बालक, 104 साधु, 19 साध्वी शामिल हैं। इनमें से बालतल के मार्ग से 1,008 तीर्थ यात्री और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2,624 यात्री शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं उनसे क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास। तारिक, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया इकबाल जी, प्रिय श्रोताओं को मेरा सुप्रभात। पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और इसके आसपास के क्षेत्र में आज मौसम सुहाना, शीतल और मनभावन बना हुआ है। कहीं कहीं आकाश में हल्के बादल भी छाए हुए हैं, जिससे यात्रा मार्ग का माहौल अति अनुकूल बना हुआ है। आस्था और उत्साह सफलता से पूर्ण इस पावन यात्रा के दौरान आज सुबह 4 बजे नुनवन आधार शिविर निजी होटलों और हटों से हजारों श्रद्धालुओं के जत्थे 16 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां के जरिए चंद्रवारी पहुंच गए। वहां आवश्यक व्यवस्थाओं पूरी करने के बाद श्रद्धालु शीशनाग और पंचतरणी की ओर अपनी पदयात्रा आरम्भ करेंगे। इधर शीशनाग और पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले शिव भगत आज पवित्र अमरनाथ गुफा के ओर प्रस्थान करेंगे और बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 3,632 यात्रियों पर मुश्तमिल यात्रियों का 17वां जत्था कश्मीर घाटी के ओर रवाना है। तकरीबन 12 बजे से पहले पहल राजीव कुंड पैसठ का पहुंच पाएंगे, जहाँ से अलग अलग दलों में बालतल और पहलगाम की तरफ रवाना होंगे। 97 छोटे बड़े वाहनों में मुश्तमिल जत्था, जिसमें 2,620 यात्री शामिल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम पर 1 बजे के करीब पहुंच पाएंगे। इन यात्रियों में 1,975 पुरुष, 525 महिलाएं, 104 साधु और 19 साध्वी, जबकि एक बालक भी शामिल है। 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर अगर दृष्टि डालें तो मौसम आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई से कल शाम तक 3.5 लाख से अधिक भगत बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। यात्रा के सफलता और श्रद्धालुओं की सहूलियत का जायजा लेने के लिए कल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी भी रिवायती यात्रा मार्ग नुनवन आधार शिविर का विस्तृत दौरा किया और यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लगातार चौकसी और श्रद्धालुओं को उत्तम से उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया
0: जी।
1: तो इकबाल जी, आप बात करें मौसम की, तो पहलगाम के आसपास के क्षेत्र और पवित्र यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना और सुखद बना हुआ है, जबकि आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम से पवित्र गुफा तक तापमान 14 तो कहीं 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो दिन के दौरान बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और शाम को जो मौसमियात के मुताबिक शाम को हल्की बारिशें होने का भी इम्कान है। जम्मू से पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग ऊंचे पहाड़ी

0: क्षेत्र और नगर कस्बों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और दीगर एजेंसियां जो आंतरिक सुरक्षा अपकरणों से लैस होकर 24 घंटे अपनी सेवाएं अंजाम दे रहे हैं। नुनवन आधार शिविर में यात्रियों के क्याम के लिए लगभग 600 टेंट्स, 3 बड़े हट्स और 18 छोटे हट्स की व्यवस्था की गई है। भोजन के सौदा के लिए 13 लंगर श्रद्धालुओं की सेवा में निरत है। इसके अलावा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आदि हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। नुनवन आधार शिविर में 1 साथ 10 हजार से ज्यादा यात्री आवश्यक सुविधाओं के साथ रात विश्राम कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आज बिल्कुल उन्हीं इंतजाम और उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ अभी यात्रा आगे बढ़ रही है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
0: थैंक यू
1: श्रोता, ये थे एस तारिक, पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि मौसम जो है खुशगवार ही है, दोनों मार्गों पर आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। आपको याद दिलाते चले, कल शाम गए जो है 15,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं और आज सुबह प्रातः जो है पवित्र गुफा की ओर रुके पड़े तीर्थ यात्रियों को जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। वही प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज यात्रा का 17वां जत्था 148 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें से 2,624 तीर्थ यात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से, वही 1,008 तीर्थ यात्री बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। आपको याद दिलाते चले, जब आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से यात्रा की ओर निकलते हैं, पहलगाम से होते हुए आप चंदनवाड़ी, पिसू टॉप, जोजीबल, नागाकोटी, शेषनाग, महागुना स्टॉप से होते हुए आप पंचतरनी के बाद संगम पहुंच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों रास्तों से आ रहे तीर्थ यात्री एक साथ मिल जाते हैं। बालटल के मार्ग की अगर बात करें तो बालटल से जो है आप दो मील से होते हुए ब्रारी मार्ग से कुछ ही किलोमीटर्स का सफ़र तय करके संगम पहुंच जाते हैं। संगम से तीर्थ यात्रा जो है एक साथ चलती है पवित्र गुफा की ओर। 3 किलोमीटर्स का सफ़र तय करना पड़ता है। मौसम जो है ऊपरी क्षेत्र में खुशगवार ही है, ताहम ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदिया जो है नहीं रहता है। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ गर्म मलबूसात अपने साथ ज़रूर रखें, वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेला, विंड चीटर्स, लेसेस वाले शूज़ जो है उन्हीं में जो है आप यात्रा करें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है और मौसम का जो है भरोसा नहीं रहता है कब मौसम जो है करवट लेगा। तो आप पहले ही कोशिश करें कि आप अपने आप को तैयार रखें। और हाँ, जब भी आप यात्रा कर रहे हो दोनों मार्गों पर, अगर आपको लग रहा है कि आप तबीयत जो है आपकी ठीक नहीं है, आप जो है कंसर्न नज़दीकी काउंटर पर जाए, मेडिकल काउंटर पर जाए, वहाँ डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, वहाँ जो है अपना जांच करवाए, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए, ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालटल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग अपडेट्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका।
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा का ट्रैफिक जो जम्मू से आज सुबह रवाना किया गया है बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ अभी जो बालतल का 51 गाड़ियों का काफिला है, 1008 यात्री इनमें सवार हैं और ये बस कुछ वक्त में बानहाल पहुंचा जाती है। इस वक्त रामसू के इलाके से गुजर कर बानहाल की तरफ आ रही है, जबकि पहलगाम के 97 जो व्हीकल्स है, वाहन है, उसमें 2624 श्री अमरनाथ यात्री सवार है और ये पहलगाम का अभी चनानी नाशरी टनल क्रॉस करके रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही है और यहां पर इनका जो बालतल वाला जो काफला है उनका बानहाल में खान पान किया जाता है, नाश्ते वगैरह का सुबह के अवकात में, जबकि पहलगाम का काफला चंद्रकूट में रोका जाएगा, वहां पर इनको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा और ये सिलसिला अभी चल रहा है। इस दौरान जो डाउन कानवाई है पहलगाम से वापस, जो दर्शन के बाद श्री अमरनाथ यात्रा की गुफा के दर्शन के बाद जो गाड़ियां वापस आ रही है, तो वो भी कुछ वक्त में जो बानहाल पहुंचा चाहती है। इनका जो कयाम होगा ये सीधे चंद्रकूट पहुंचेंगे और वहां पर इनको रोका जाएगा, जबकि पहलगाम का जो वापस दर्शन के बाद आएंगे यात्री तो उन्हें बानहाल में ही रोका जाएगा। फिलहाल जो डाउन कानवाई पहलगाम का जो है, ये कुछ वक्त पहले जो पुलिस की इत्तला है कि अल सिटाप अनंतनाग ने क्रॉस किया था और ये काजीगुंड से होकर बानहाल की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान आज सुबह अलल सुबह जो बालतल के काफला हमारा जा रहा था जम्मू से भगवती नगर, जम्मू से बालतल की तरफ जो श्री अमरनाथ यात्रा की गाड़ियां जा रही थी आज सुबह की कानवाई में, तो इसमें एक गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है। ये ड्राइवर जो चला रहा था गांधरबल का, इसका ड्राइवर चला रहा था तो उसने ये एक वहां पर एक डंपर रुका हुआ था नेशनल हाईवे पर संगूर के पास, संगूर चौक के पास उधमपुर में, तो ये उस डंपर के साथ ये गाड़ी जो है जोरदार तरीके से टकराई, जिसके नतीजे में इसमें सवार जो है 5 जो श्री अमरनाथ यात्री ड्राइवर समेत 5 अपराधी

0: जख्मी हुए हैं, ये लखीमपुर और सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पूरी तौर पर जो वहां पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त जो खड़े खड़े होती है, यात्रा जब गुजरती है पूरा इंतजाम होता है, पूरा निजाम होता है, तो उन्हें पूरी तौर पर वहां से जख्मियों को हटाकर जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया है। वो तमाम की हालत जो है बेहतर बताई जा रही है। मजमुई तौर पर जो रामबन बनहाल का स्ट्रेच है, इसमें मौसम जो है बिल्कुल अब्र आलूद बना हुआ है, खुशगवार है। हालांकि कल गर्मी थी, दिन में धूप, ये बादल भी थे, धूप भी थी, लेकिन जो गर्मी की पिछली जो टेम्परेचर था, जो ह्यूमिडिटी वो ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त जो कल के मुकाबले में बहुत खुशगवार मौसम है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबंद मिस्टर मोहम्मद अलियास खान ने भी कल शाम देर गए, जो मतलब आते रहते हैं चेक करने के लिए यात्री लंगर्स का, और कल शाम जो मोहम्मद अलियास खान है, डीसी रामबन है, हमारे एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता है, उनके अलावा जो एडीसी वरुणजीत चाणक, एसडीएम बानहाल मोहम्मद नसीब, इन्होंने सब ने कल देर गए एक सरप्राइज चेक किया यहाँ बानहाल के लंगर का, और वहां पर सभी जो बिल्कुल ठीक ठाक पाया, जो भी उन्होंने वो कोशिश की थी कि चेक किया जाए क्या कैसे निजाम चल रहा है यात्रियों के लिए, तो उन्होंने वो सेटिस्फाई होकर वहां से देर से निकले, लेकिन वहां पर जो पाया कि सभी जो इंतजाम हैं अपनी जगह से बेहतर हैं, और उनने जो लंगर्स हैं वहां पर, जो यात्री हैं जो वहां पर रात को ठहरते हैं लोग, उनसे मुलाकात की और उनसे मतलब उनका फीडबैक लिया, उनके मतलब किसी किस्म की परेशानी हो, तमाम यात्रियों ने एक जबान होकर जो इंतजाम थे इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, उन पर खुशी का इजहार किया। जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी देने के लिए
0: शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट दे रहे थे। कि जैसे कि बता रहे थे कि आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम अबर आलूद ही है, ताहम अभी किसी भी वर्षा की कोई संभावना नहीं है, मौसम खुशगवार है, और इस मौसम के बीच जो है तीर्थ यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तथा इस वक्त रवा दवा है घाटी की ओर, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से प्रातः जो है आज 17वां काफिला घाटी की ओर रवाना किया गया। सभी तीर्थ यात्री बड़े शब्दमत के साथ इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। दोनों मार्गों पर आज मौसम जो है अभी खुशगवार ही देखने को मिल रहा है। दोनों मार्गों पर तीर्थ यात्री रुके पड़े तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। कुल मिलाकर 3.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्री अभी तक पवित्र गुफा की ओर जाकर शिवजी के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं। श्रोताओं, इस वर्ष की यात्रा भी जो है अभी पूरे विशेष उत्साह के साथ जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जो है व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक जो है मिलकर तीर्थ यात्री शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जगह जगह जो है तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए अवेलेबल रहे और उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए लगे रहे। दोनों मार्गों पर जो है आपको जगह जगह पर ऐसे काउंटर्स मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, चाहे खान पान के काउंटर्स हो, मेडिकल काउंटर्स हो, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हो, या अन्य हेल्पलाइन डेस्क काउंटर्स हो जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन और लोकल जो नागरिक है, स्थानीय नागरिक जो है, मिलकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और शिवजी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही आकाशवाणी की मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगम 100.1 MHz, DTH आकाशवाणी की मोबाइल ऐप तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरी उत्साह के साथ जारी है। सभी तीर्थयात्री सरकार द्वारा उठाए गए इकदामों से बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक एक साथ मिलकर जो है इस बात को यकीनी बनाने में जुटे हुए हैं कि सभी शिव भक्तों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है विशेष ध्यान रखा जाए। हर वर्ष की तरह RFID ट्रैकिंग, हेल्पलाइन सर्विस और अन्य डिजिटल सुविधाएं जो है तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह पर उपलब्ध रखी गई है। आकाशवाणी भी तीर्थ यात्रियों की इस यात्रा में जुड़ा

हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहे, आपको अपडेट कराते रहे, ताकि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है हम आपका साथ निभाते रहे और आपको अपडेट्स देते रहे। यही हमारी कोशिश है और शिवजी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है सफल, सुखद और मंगलमय हो। सभी तीर्थ यात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे, ताकि आपकी जो यात्रा है दोनों मार्गों पर अच्छे से गुजरे और अच्छे से मुकम्मल हो पाए। दोनों मार्गों पर जो है आपको जगह जगह पर प्रशासन द्वारा बनाए गए काउंटर्स मिलेंगे, उनसे आप उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते रहे, उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे तभी आपकी यात्रा जो है उसमें आसानी होगी। और कोशिश करें कि आप एक समूह में यात्रा करें, कोई भी शॉर्टकट नहीं ले। दोनों मार्गों पर जो है आप एक समूह में यात्रा करें, शॉर्टकट ना ले, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए और अपना RFID कार्ड जो है पहने रखे। और जहाँ पर भी आपको किसी भी दिक्कत का सामना हो, हेल्पलाइन जो सर्विस है, हेल्पलाइन काउंटर्स जो है उनके पास जाकर जो है आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, ताकि उनकी सेवा के लिए जो है आप वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। दोनों मार्गों पर जगह जगह पर आपको काउंटर्स मिलेंगे और कोशिश करें कि दोनों मार्गों पर जो है आप RFID कार्ड पहने रखें। RFID कार्ड के ज़रिए जो है आपको हर जगह पर ट्रैक किया जाता है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक तो पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्रोताओ, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनते हैं।
1: मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री

0: मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सप

0: फल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
1: Working to strengthen each other's...
2: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
3: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
8: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
7: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat railway stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
9: UN Home Minister Amit Shah arrived at Baghdogra last night on a three-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a Prohori Shambelon. He is also scheduled to hold a series of meetings at Uttarakhand on issues concerning the border areas of North Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari and senior state government officials are likely to attend the meetings. Mr. Shah will travel to Kolkata this evening. Tomorrow, the UN Home

0: शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिरे से मुतालिक बातचीत के कामयाब अख्ताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की असलाहत, शफाफ, मुस्तहकम और मसाबिकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सैयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफर में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि चार सतहों वाले इस रॉकेट को तेज रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमाया होती हैं जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। अक्वामी मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीकात के लिए कहा है। अक्वामी मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से जोर देकर कहा कि वह तहमुल से काम लें, बुनियादी हकूक की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
2: मैं यह कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाक़े अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी समझौते पर राजी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंगबंदी के नफाज के बाद से गजा में कम अज कम 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमेरिकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफ़र के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज सनती व इकतसादी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिज़ाइन

अभी इसका विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 700 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज सुबह से पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 490 पुरुष, 185 महिलाएं, 8 बालक, 6 साधु, 45 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 700 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज सुबह से पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं। दोनों मार्गों पर मौसम खुशगवार है, यात्रा पूरे शद्दुमत के साथ जारी है। आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो है तीर्थ यात्रा का आज 17 बजे आबादी की ओर रवाना किया गया। 148 छोटे बड़े वाहनों में 3632 तीर्थयात्री आज वादी वारिद होंगे, जिनमें से 2624 तीर्थयात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1008 तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम अबरालुद ही रहेगा, ताहम ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का अंदिया नहीं रहता है। सभी तीर्थयात्रियों से यही निवेदन कि आप जो है दोनों मार्गों पर एहतियात से काम ले, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, यात्रा के पहले 15 दिनों में 3.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। शिवजी से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा स्वस्थ, सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही आकाशवाणी की मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर अगर आप जा रहे हैं तो आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम रिजवान गांधरबल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स उनके पास, आइए सुनते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अपने श्रोताओं को हम बादल मुकीमा के बारे में बिल्कुल जानकारी देते रहते हैं तीर्थ यात्रा के हवाले से। और बादल मुकीमा से बीते दिनों की तरह आज 16वीं रोज श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु बालतल क्षेत्र की सुंदरता देखकर झूम उठे एवं वह धुमिल से रेल पथरी काली माता ब्यारी मार्ग संगम पाकिस्तानी लवर की वजह से कठिन पड़ा होता है घर के पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मौसम भी खुशगवार है, धूप खिली हुई है। इस वातावरण में आज 6,432 श्रद्धालु पूरे उत्साह तथा भक्तिभाव के साथ से गुफा की तरफ रवाना हुए। धुमिल कंट्रोल गेट से अपना पवित्र सफर शुरू करने वाले इन श्रद्धालुओं में 4,754 पुरुष, 1,321 महिलाएं, 121 बालक, 27 साधु, 16 साधिया, 4 टर्नर जनरल एवं 189 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। जय बाबा बर्फानी का पवित्र नाद करते हुए जोश जज्बे के साथ इन श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान

0: हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोज पवित्र गुफा जाकर माता टेकते हैं। पूजा पाठ में शिरकत करके देश एवं घाटी के अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: जी
0: इधर बीती रात 10 बजे तक 15,165 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 10,250 पुरुष, 4,530 महिलाएं, 178 बालक बालिका, 42 साधु, 10 साहिया, 10 टनर जनरल एवं 152 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। श्रद्धालु देर रात गए तक शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने जिला प्रशासन के द्वारा इस वर्ष किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन, शौचालय, साफ पानी, बिजली, नहाने के लिए गर्म पानी, चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ रात्रि विश्राम के लिए उनका बेडिंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक जगह जगह सेवादार सुबह 4 बजे से ही अपने लंगर रूम में यात्रियों की भोजन कराने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इसी तरह सुरक्षा कर्मी भी तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए चाकू छुपर नजर आ रहे हैं। इस तरह व्यवस्थाओं को लेकर यात्री बेहद संतुष्ट हैं तथा वे यहाँ का वातावरण देखकर झूम उठते हैं एवं यहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें मन को शांति प्राप्त होती है। इधर श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर यात्री वाहनों को तर्जी बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। कॉन्वॉय के दौरान किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे पीछे एवं दाएं बाएं चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह तीर्थ यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। बताओ, हम आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके।
1: धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थी रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि मौसम जो है खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम में तीर्थ यात्री बड़े उत्साह के साथ, जोश और खरोश के साथ इस पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। वही आपको बताते चले, आज ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यात्रा ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से कुल मिलाकर 600 से अधिक तीर्थ यात्री जम्मू की ओर रवाना किए गए। जो तीर्थ यात्री कल जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त कर चुके थे, जो रात देर गए जो है यात्रा ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में रुके हुए थे और उन्हें सुबह प्रातः जो है जम्मू की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 27 छोटे बड़े वाहनों में 609 तीर्थ यात्रियों को जो है जम्मू की ओर रवाना किया गया। आपको याद दिलाते चले, आज सुबह से लेकर जो है 700 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज प्रातः तीर्थ यात्रियों का 17वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 148 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री कुछ ही घंटों बाद काजीगुंड पहुँचने वाले हैं, जिनमें से 2,624 तीर्थ यात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1,008 तीर्थ यात्री पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे। महकमे मौसम याद से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम पवित्र गुफा के नज़दीक जो है ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी, कब मौसम करवट लेगा, इस बात का अंदिया नहीं रहता है। सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहें ताकि पूरी यात्रा आपकी सफल, सुखद और मंगलमय हो। शिव जी से यही प्रार्थना कि आप सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है स्वस्थ, प्रसन्न और सुखद रहे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवा। अज्ञानेन अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है।

गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों, पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, 9:25 होने को है, आइए अब समाचार सुनते हैं।

0: में एक यात्रा बस को पेश आए हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मिंगा शेरपा और गारमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसरान को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की फौरी सेहतियाबी की दुआ की है। वाजह रहे आज सुबह यात्रा काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 5 यात्री और गांधरबल से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर जख्मी हुआ है। सभी जख्मी अफराद को जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया है जहां वो जेर इलाज हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। कल शाम तक लगभग 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासना आज सुबह 7 बजे तक मजीद 734 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 3632 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफिला आज सुबह वादी की तरफ रवाना किया गया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस साल सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से यात्रियों की जानिब से मिलने वाला फीडबैक इंतहाई हौसला अफजा है।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया है और जो फीडबैक यात्रियों से मिला है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सब सफल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा।
0: पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफद ने इदारे के सीईओ और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रंजीत मेहता की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर यूटी में मईशत, फिल्म, सियाहत और सरमायाकारी के मौकों को फरोग देने से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि इंतजामिया सरमायाकारी, सियाहत और मईशत को फरोग देने में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। दरियासना वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज के बानी डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्र ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अलाहिदा मुलाकात की जिस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में साइबर जराइम से निपटने और साइबर सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक अहम पेशरफ के तहत JK4C यानी जम्मू कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने को मंजूरी दी है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक ये मरकज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगा। 23 जिले साइबर पुलिस स्टेशन और 2 जोनल साइबर मराकज इस नए इदारे के साथ मुंसलिक रहेंगे जिनका सरबरा IGP रैंक का अफसर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा। सेंटर मरकजी वजारत दाखिला के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ करीबी इश्तराक में काम करेगा ताकि इसे कौमी सतह पर साइबर जराइम से निपटने के निजाम के हम पल्ला बनाया जा सके। खुराक और शहरी रसदात के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत शफाफ, जवाबदेह और तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है जिसमें यकसां तामीर और तरक्की और मुआशरे के हर तबके की फलाह बहबूद को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने हल्का इंतखाब छम में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत के मुतअद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के मौके पर किया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में कारोबार और आसान तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए मुल्क की सतह पर कामयाब साबित हुए बेहतरीन हुक्मरानी के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है। वो मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों और मुतलका महकमों के सीनियर अफसरान की एक आला सतह की मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा आज से SKICC श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक जारी रहने वाले इस कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता करने वाली किताबों का जखीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहेगा। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खिदमात दस्तियाब रखते हैं। आखिर में दर्जे हरारत, जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। वादी में गुज़श्ता रात इस मौसम की अब तक की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां

यथा घाटी की ओर रवाना किया गया, जिनमें से कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवाना दवा है। कुछ ही घंटों में काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। 148 छोटे बड़े वाहनों में 2,650 पुरुष, 858 महिलाएं, एक बालक, 104 साधु, 19 साध्वी शामिल है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2,624 तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर इनमें से रवाना किए जाएंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1,008 तीर्थ यात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे। आपको याद दिलाते चले, ये जत्था जो है 12 बजे के आसपास काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंच जाता है। काजीगुंड पहुंचते हुए इस जत्थे का जो है विभाजन होता है, एक हिस्से को नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंचाया जाता है, वही दूसरे हिस्से को पांथा चौक ट्रांजिट कैंप श्रीनगर पहुंचाया जाता है। पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से होते हुए आप गांदरबल, दुमेल, ब्रारीमर्ग और उसके बाद जो है संगम पहुंचते हैं। वही पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से होते हुए आप चंदनवाड़ी, पीसू टॉप, जोजीबल, शशनाग, महागुना स्टॉप, पंचतरनी से होते हुए संगम पहुंच जाते हैं। संगम से एक साथ मिलकर सभी तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना होते हैं। पवित्र गुफा तक आपको 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इन दोनों मार्गों पर बीच बीच में आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। ऊपरी क्षेत्र है हिमालय के, इस क्षेत्र में जो है आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है और इस रास्ते में जो है आपको एहतियात से काम लेना होता है। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश कि आप जो है सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। जो भी दिशा निर्देश सुरक्षा कर्मी या सरकार प्रशासन द्वारा आपको दिए जाते हैं, उन पर आप ज़रूर काम करें, उनको आप ज़रूर अमलाएं, ताकि पूरी यात्रा के दौरान जो है आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। प्रशासन की मुसलसल यही कोशिश है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आपको जगह जगह पर सहूलियत मिले, जगह जगह पर आपकी सेवा में अधिकारी लगे हुए हैं। आपसे यही निवेदन कि आप उनसे कॉपरेट करते रहे, ताकि दोनों यात्रा पर जो है, दोनों मार्गों पर जो है आपकी जो ये यात्रा है सफल, सुखद और सुरक्षित रहे। शिव जी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की ये यात्रा है स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइक को पंथा चौक के ट्रांजिट कैब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 16वां दिन है और आज भी हम श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पंथा चौक से जो अमरनाथ जी यात्रियों के जत्थे हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आज सुबह रवाना किए गए हैं। वहीं यहां रात को कई सारे अमरनाथ जी यात्रियों ने स्टे किया था और जो पवित्र गुफा का दर्शन करके लौटे थे और यहाँ पे वो रात को रुके थे, और उनको भी आज सुबह यहाँ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के रास्ते से वापस रवाना किया गया। और आज जो यहाँ से श्रीनगर से अमरनाथ जी यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए, इनमें मेल, फीमेल और साधु साध्वी भी शामिल थे और कुछ इसमें बच्चे भी शामिल थे। और ये दोनों जत्थे जो है अलग अलग रास्तों की तरफ से इस श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से रवाना किए गए, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट या कानवाई के बीच में। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि या फिर जो रात को यहाँ पे अमरनाथ जी यात्री रुके थे और आज सुबह उनको वापस जो है भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के इस पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हुकूमत की तरफ से सारी सुविधाएं, सारी जो अरेंजमेंट्स है वो रखे गए हैं। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं मुसलसल या कंटिन्यूसली वो इसका रिव्यू भी कर रहे हैं और अमरनाथ जी यात्रियों से अरेंजमेंट्स को लेके फीडबैक भी ले रहे हैं। और जैसे कल LG साहब ने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये हिदायत दी कि वो यात्रियों से मिले और उनसे उनका फीडबैक भी हासिल करें, और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो, किसी असिस्टेंस की जरूरत हो या कोई शिकायत हो तो उसको विद इन नो टाइम जो है रिजॉल्व करें। तो एज सच अभी श्रीनगर के इस पंथा चौक ट्रांजिट कैब में हम भी मुसलसल पहले रोज से ही अमरनाथ जी यात्रियों से बात कर रहे हैं अरेंजमेंट्स को लेके, बाकी चीजों को लेके, जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ पे रखी गई है अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटीज हम उनसे बात कर रहे हैं। और अभी तक सारे जो यात्रियों ने हमसे बात की है वो प्रशासन की इन काफी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स उनके लिए रखे गए, खासकर जो आर्मी और पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से जो खिदमत दी जा रही है। तो अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत अमरनाथ जी यात्रियों की तरफ से नहीं मिल रही है। और आज भी श्रीनगर में मौसम बिल्कुल सुहाना है, धूप खिली हुई है और इस सुहाने मौसम के बीच में अमरनाथ जी यात्रियों को आज सुबह जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, विस्तार में जानकारी देने के लिए। श्रोता, ये थे इमरान नाइक को ट्रांजिट कैंप पंथा चौक से अपडेट दे रहे थे। मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम में दोनों मार्गों पर तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 1743 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुँच कर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1205 पुरुष, 395 महिलाएं, 23 बालक, 16 साधु, 3 साध्वी, ट्रांसजेंडर और 100 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 1743 तीर्थयात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर जो है आज शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ इस वक्त जारी है। यह यात्रा जो है राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का भी हमें प्रतीक है। देश के विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियों से आने वाले श्रद्धालु जो है एक ही उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसे विविधता में एकता की भारतीय भावना और अधिक सुदृढ़ होती है। अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष सेवा भाव भी है। यात्रा मार्ग पर अनेक संस्थाएं और स्वयंसेवक लंगर, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सेवाएँ जो है प्रदान करते हैं। निस्वार्थ सेवा की ये परंपरा जो है भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाती है। श्रोताओं, भगवान शिव को संहर और सृजन दोनों का देवता माना जाता है। उनका संदेश है कि जीवन में सत्य, धैर्य, करुणा और आत्मसंयम को अपनाया जाए। अमरनाथ यात्रा हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। शिवजी से यही प्रार्थना, सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बाल्टल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले, हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 1743 तीर्थ यात्रियों ने आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 1205 पुरुष, 395 महिलाएं, 23 बालक, 16 साधु, 3 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 100 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 1743 तीर्थ यात्रियों ने जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 खुशगवार मौसम में दोनों मार्गों पर बड़े जोश और उत्साह के साथ जारी है। श्रोता, श्री अमरनाथ जी यात्रा का 17वां दिन पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों से आए हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर अपने जीवन को जो है सफल कर रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र अमरनाथ गुफा हिमालय की गोद में स्थित एक अद्भुत तीर्थ है। यह प्रतीक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसके बाद से ये स्थल अनंत काल तक भक्ति और विश्वास का केंद्र बन गया है। दोनों यात्रा मार्गों पहलगाम और बालतल पर जो है श्रद्धालुओं की यात्रा व्यवस्थित रूप से जारी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बल, चिकित्सा दल और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जो है हर यात्री की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर रही है। यात्रा के द्वारा प्रकृति का अद्भुत दृश्य हर किसी का मन मोह लेती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बहते हुए झरने और पवित्र वातावरण जो है शिव भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव करवाता है। श्रोताओं, आप यात्रा पर आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखें। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पीते रहे, आराम भी करते रहे, प्रशासन और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करते रहे, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, किसी भी ऐसे काम से परहेज करें जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे और बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब भी आप यात्रा के लिए निकले, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं, जिस भी जगह से आप आ रहे हैं, पहले ही कोशिश करें कि आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप यात्रा के लिए निकलें, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ मन बनाया है कि यात्रा करूं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करें कि पहले ही एडवांस में आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उसके बाद ही आप यात्रा के लिए निकले। और जब भी आप अपना यात्रा परमिट हासिल करें, उसे अपने साथ रखें, RFID कार्ड हासिल करें, उससे पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें, क्योंकि RFID कार्ड के ज़रिए ही आपको जगह जगह पर जो है ट्रैक किया जाता है। जैसा कि बार बार आपसे ये निवेदन किया जाता है कि आप जो है एक समूह में यात्रा करें, किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ओर ना जाए, एक समूह में यात्रा करें, कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप यात्रा करें, अपने साथ एक पन्नी रखें जिस पे आप अपना नाम,
अपनी जगह का नाम और अपने साथी का नाम ज़रूर लिखे रखे, ताकि आपको जो है आसानी से ट्रैक किया जाए। और हाँ, जब भी आप यात्रा के लिए निकले अपना पोस्ट पेड सिम हासिल करें। पोस्ट पेड सिम के साथ ही आप जो है यात्रा के लिए निकले, क्योंकि यहाँ पर गैर जम्मू कश्मीर सर्कल की प्रीपेड सिम जो है नहीं चल पाएंगे। कोशिश करें कि आप पहले ही अपने साथ पोस्ट पेड सिम रखें और एक समूह में यात्रा करें, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर ना जाए और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। अपने साथ जो है ऊपरी क्षेत्र में जब आप जाते हैं हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, कब वर्षा होगी, कब मौसम करवट लेगा, उस चीज़ का पता नहीं रहता है। इसीलिए आप पहले ही अपने आप को तैयार करके रखें, अपने साथ वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेला, विंड चीटर्स, गर्म मलबू साथ, वाटरप्रूफ बैग साथ रखें, ताकि ऊपरी क्षेत्र में अगर वर्षा भी हो आप जो है आसानी से अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी भी दुविधा से आप जूझ रहे हैं, नीचे जो है बहुत सारे ऐसे काउंटर्स आपको मिलेंगे, चाहे वहाँ पर डॉक्टर्स की बात हो, मेडिकल की बात हो, हेल्पलाइन डेस्क की बात हो, जगह जगह पर आपको काउंटर्स मिलेंगे। नीचे वाले क्षेत्र में ही आप उन काउंटर्स का इस्तेमाल करें, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ मशवरा करें, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो आप जो है वैसे रिस्क ना लें, पहले ही जो है आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि ऊपरी क्षेत्र की जो यात्रा है वह आसानी से गुजरे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना, शिव जी से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें, FM 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थ यात्रा का 17वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 148 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री कुछ वक्त बाद काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, जिनमें से 2,624 तीर्थ यात्री पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुँचाए जाएंगे। वही 1,008 तीर्थ यात्रियों को ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री आज घाटी की ओर रवाना किए गए। हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है, अभी तक 3,000 से अधिक तीर्थ यात्री पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें 2,138 पुरुष, 685 महिलाएँ, 53 बालक, 24 साधु, 3 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 130 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 3,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओ, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारे टीम के साथ साझा कर सकते हैं हमारे समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, 9596990954। नंबर एक बार फिर सुने, 9596990954। इसके अलावा आप हमें ईमेल आईडी के जरिए भी अपने विचार और अनुभव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में बालतल और पहलगाम के मार्ग पर जो है पूरे उत्साह और जोश के साथ जारी है। कुल मिलाकर अभी तक 3,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने आज शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। अभी अभी मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है 4,590 तीर्थ यात्री जो है अभी तक पवित्र गुफा पहुंच चुके हैं और पवित्र गुफा पहुंचकर उन्होंने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 3,288 पुरुष, 1,020 महिलाएं, 80 बालक, 36 साधु, 7 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 158 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 4,590 तीर्थ यात्री अभी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पवित्र गुफा पहुंच चुके हैं और शिवजी के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं। आकाशवाणी संस्करण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्य

0: वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा

0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, हमें मिली ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक 4,590 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 3,288 पुरुष, 1,020 महिलाएं, 80 बालक, 36 साधु, 7 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 158 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 4,590 तीर्थ यात्रियों ने आज सुबह से लेकर जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको याद दिलाते चले, आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 148 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 3,632 तीर्थ यात्री कुछ ही घंटों बाद काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। इनमें से 2,624 तीर्थ यात्री पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1,008 तीर्थ यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। आपको याद दिलाते चले, जब आप काजीगुंड लांबर ग्राउंड पहुँचते हैं, इस यात्रा का जो है, इस गट्ठे का जो है विभाजन होता है। एक हिस्से को पहलगाम नुनवन बेस कैंप पहुंचाया जाता है, वही दूसरे हिस्से को जो है पांथा चौक ट्रांजिट कैंप श्रीनगर पहुंचाया जाता है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जब आप जाते हैं तो पहलगाम से होते हुए आप चंदनवाड़ी, पिसू टॉप, जूजीबल, नागाकोटी, शेषनाग, महागुनस टॉप, पंचतरनी से होते हुए आप संगम पहुँच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहाँ पर

29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर जो है दोनों मार्गों पर आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। शिवजी से हमारी यही प्रार्थना कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण के संग।

0: आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, नेवजॉन AIR की आराधना चैनल। इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पाएंगे।

श्रोताओं, ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट के अनुसार आज कुल 4,590 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, जिनमें 3,288 पुरुष, 1,020 महिलाएं, 80 बालक, 36 साधु, 7 साध्वियां, 1 ट्रांसजेंडर, 158 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आप सुनते रहिए पवित्र अमरनाथ यात्रा जी की का ये विशेष प्रसारण।

26 का 17वां जत्था 148 छोटे बड़े वाहनों में आज घाटी पहुंच चुका है, जिनमें 3632 तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, जिनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2624 पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1008 यात्री दर्शन प्राप्त करेंगे। यही प्रार्थना है कि सभी यात्रियों की यात्रा सफल रहे। आप सुनते रहिए यात्रा का ये विशेष प्रसारण।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करे।

श्रोता हुआ आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर, और इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सुनते रहिए यात्रा का ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, नेवज ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आप सुनते रहिए भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण। समाचार का वक्त हो रहा है, आइए समाचार सुनते हैं।

0: जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आई फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

됐다. भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल, और इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, आपको बताते चले कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां जत्था 148 छोटे बड़े वाहनों में अभी अभी काजीगुंड पहुंच चुका है, जिनमें 3632 तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, जिनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2624 पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। वही बालतल मार्ग से 1008 यात्री दर्शन प्राप्त करेंगे। यही प्रार्थना है कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल रहे। आप बने रहिए हमारे संग इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, नेवज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप

हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। अभी तक आप बने थे जुबैर के संग और आगे के इस सफर में आपका साथ निभाऊंगी मैं, आपकी होस्ट शाइस्ता बुखारी। आप यात्रा के जिस भी पड़ाव पर हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपका ये सफर, आपकी ये यात्रा सफल रहे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, निवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। आप सभी यात्रियों की सुरक्षा, स्वस्थ और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz,

न्यूज़ ऑन एआईआर के आराधना चैनल तथा डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। पल पल की खबर रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 17वां जत्था 148 छोटे बड़े वाहनों में आज गाठी पहुंच चुका है, जिनमें 3,632 तीर्थ यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जा चुके हैं, जिनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 2,624 पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं बालतल के मार्ग से 1,008 यात्री दर्शन प्राप्त करेंगे। यही प्रार्थना है कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल रहे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रमवन ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने

0: लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के तेजी से तरक्की करते हुए निजी खलाई शोबे के लिए एक अहम संगमील है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और फरोग पाती हुई खलाई मईशत की अक्कासी करती है। विक्रम वन को हैदराबाद में वाक़ खलाई कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने डिज़ाइन और तैयार किया है। मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया यह रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सेटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी तीन मराहिल हैं, जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नसब है, जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियाँ अंजाम देने में मदद फराहम करता है। यह रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाकई मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाजह दो टोक और मजबूत मौकफ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि

पुरुष, 2422 महिलाएं, 161 बालक, 69 साधु, 17 साध्वियां, 2 ट्रांसजेंडर और 261 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे के इस कार्यक्रम में हम अपने संवाददाताओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है यात्रा के हवाले से, और साथ ही हम मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: तेरी मालाएं, 104 साधु और 19 साध्वी, जबकि एक बालक भी शामिल थे। आपको ये भी अवगत कर दूं कि प्राचीन मार्ग पहलगाम से यात्रा का ताल्लुक शिव के इस प्रतिकाल सफर के साथ है, जिसमें शिव ने मुख्तलिफ पड़ाव पर मुख्तलिफ चीजों का त्याग देकर माता पार्वती को अमृत का रहस्य बता दिया था। 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर अगर दृष्टि डालें तो मौसूल आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई से कल शाम तक 3.5 लाख से जायद भगत बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और इस वक्त
1: जी जी एस तारिक साहब, आपसे संपर्क इस वक्त टूट चुका है। हम फिर से एस तारिक साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: मौजूद है। तो प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्था और स्थानीय लोगों की सेवादारी हर यात्री संतोष व्यक्त करते हैं। आशा है कि बाबा के द्वार दर्शन के आए शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और सुखद तरीके से यात्रा सफलता के साथ अपने अंत को पहुंचे। जी
1: हमारी भी यही प्रार्थना है कि यात्रा जो है ये अच्छे से मुकम्मल हो जाए सभी यात्रियों की। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस तारिक साहब, हम फिर से जो ही मौका मिलेगा हम जुड़ेंगे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान जी। आइए इनसे सुनते हैं आज के हवाले से अपडेट्स जो हैं।
1: जी मैम, यात्रियों के हवाले

नहीं दी जाती है, बल्कि सिर्फ यात्रा कौन वही सफर कर सकती है इस राजमार्ग पर। तो इस दौरान जो दाएं बाएं गाड़ियां हैं या गली कोचों से आने वाली या छोटी सड़कों से आने वाली गाड़ियां हैं, सुरक्षा कर्मी चारों चाकू बंद है, वो तब तक उनको रोक के रखते हैं जब तक कॉन्वॉय वहां से गुजरेगी। तो कॉन्वॉय जो ही गुजर जाएगी उसके बाद यात्रियों दीगर गाड़ियों को चलने फिरने की इजाजत दी जाती है। इस तरह न सिर्फ बालतल क्षेत्र में या बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक सुरक्षा कर्मी चाकू चौबंद रखे गए हैं, बल्कि श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर और जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से श्रीनगर तक चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, और ऐसी सुरक्षा के बीच यात्री कॉन्वॉय को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बीते दिनों की तरह आज भी बालतल मुखी मार्ग से तीर्थ यात्रा अच्छी तरीके से जारी है।

शून्य नौ पाँच चार, नौ पाँच नौ छः नौ नौ शून्य नौ पाँच चार। आप हमारे साथ हमारे मेल पे भी जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए।

0: यात्रा शुरू हुई है तब से बिना किसी बाधा के ये तीर्थ यात्री जो हैं, श्रद्धालु जो हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: लगातार यहाँ भगवती माफ कीजिएगा भगवती नगर माफ भगवती नगर मार्ग से यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और आज भी इसमें 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। और अभी तक सूचनाओं के अनुसार जो है दोनों मार्गों की तरफ रवाना होने वाले श्रद्धालु सही सलामत बेस कैंप पहुंच भी गए हैं, जो एक लगातार चलता सिलसिला है।
1: बिल्कुल
0: और इस दौरान इसमें जम्मू में श्रद्धालुओं का यहाँ गर्मी और उमस भरे मौसम के दौरान तकलीफ का सामना जरूर है, लेकिन ड्यूटी दे रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी श्रद्धालुओं के लिए बखूबी अपना ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ट्रांजिट कैंप्स में इस गर्मी और उमस के पेश नजर श्रद्धालुओं के लिए पंखे कूलर लगाए गए हैं, जिनकी वजह से श्रद्धालु भी दिन के इस सख्त मौसम में आराम करते भी नजर आ रहे हैं। तो विभागों के संपर्क में ये जो कर्मचारी हैं यहाँ बिजली पानी को लेकर खास तौर पर इस पूर्ति को कर्मचारी विभागों के संपर्क में रहकर यहाँ उसको यहाँ इन ट्रांजिट कैंप्स में बिजली पानी का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि खास तौर पर सबसे ज्यादा इस गर्मी और उमस के मौसम में, क्योंकि लगातार पिछले लगभग 2 हफ्तों के दौरान बहुत कम भी बारिश हुई है, अगर हुई है तो वो कहीं रात को हुई है या सुबह तड़के हुई है। दिन
1: जावेद
0: में
1: साहब, अगर
0: बारिश
1: गांठी की बात करें तो यहाँ पर आज मौसम विभाग का मानना है कि आज मौसम में कुछ हद तक जो है टेम्परेचर कम हो जाने का जो अंदेशा है। क्या जम्मू में कुछ ऐसा हमें
0: वो
1: देखने
0: एक अच्छी खबर आई है वो
1: जी
0: एक अच्छी
1: जी
0: खबर आई है मौसम विभाग के मुताबिक 21 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान पहाड़ी इलाकों में सख्त बारिश होने के आसार हैं
1: बिल्कुल
0: कश्मीर में। वही जम्मू डिवीजन में भी 20 जुलाई से 23 जुलाई तक सख्त तेज बारिशों की भविष्यवाणी कही गई है। इसके पेश
1: बिल्कुल
0: नजर हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रांसपोर्ट में बाधा आने के भी आसार जताए गए हैं, लेकिन इस बारिश की बहुत जरूरत है मानसून के इस मौसम में, जहां स्थानीय लोगों को वही श्रद्धालुओं को भी सबसे ज्यादा जो इंतजार होता है वो बारिश का होता है, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सख्त उमस और सख्त गर्मी जो है वो श्रद्धालुओं के मनोबल को कहीं दिन में जो है वो थोड़ा बहुत कम जरूर करती है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं सड़क के माध्यम से, उसके अलावा जो रेल के माध्यम से है, उनके लिए जो इंतजाम है वो रखे तो जरूर गए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा ही मौसम की आती है। ये दिन का जो टेम्परेचर होता है उसमें कर्मचारियों के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, सुरक्षा पर तैनात जवानों के लिए भी, क्योंकि 2400 घंटे ये तीर्थ यात्रा का जो ये पर्व है ये लगातार जारी है। इसमें जो जिस तरह से जो सुविधाएं हैं उनको जहां आसान बनाया गया है, वहीं जो गाइडलाइंस है उनको सख्त भी कर दिया गया है। आपको
1: आपसे
0: एक
1: जानना चाहेंगे यहां पर क्या यात्री जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं जो भी इंतजामात हैं?
0: जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, संतुष्टि यहाँ उस लेवल पर तो है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो लगातार हेल्प डेस्क बनाए हुए, आज ही एक जो हेल्प डेस्क बस स्टैंड के एरिया में भी लगाया गया। कोशिश सरकार की हर दिन की होती है कि जहां जहां जरूरत पड़े वहां हम हेल्प डेस्क गाइडलाइंस को बनाने के लिए, उसके अलावा जो यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है उनको बेहतर बनाया जाए, उसके अलावा आज इसके इसी दौरान यहाँ इस उत्साह अमरनाथ यात्रा को लेकर किसी तरह के भ्रम जो फैलाए गए हैं, जिस तरह से किसी तरह का जो ये उत्साह और जोश को जो कम करे, उसमें कई धार्मिक संगठनों ने अपील की है कि बाबा बर्फानी की यात्रा केवल हिम शिवलिंग के दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पवित्र गुफा और पूरे यात्रा मार्ग का अपना एक वरिष्ठ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो इसको लेकर खासतौर पर धर्म जो संगठन है वो सामने आए हैं, उन्होंने श्रद्धालुओं को खास तौर पर इस बात की अपील की है कि वो अपना सफर जो है वो जारी रखें। और जिस तरह से यहाँ श्री सनातन धर्म सभा के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम देवेश जी, उन्होंने श्रद्धालुओं से बिना किसी संशय के यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जम्मू में कहा था कि एक बयान में उन्होंने कहा था कि जिस तरह के जो यात्रा के दौरान जो भी मार्ग आते हैं जिनमें

0: शेषनाग है, महागुण टाप है, पंचतरणी है, और पूरे यात्रा के जो मार्ग है ये अपने आप में ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। इसलिए किसी भी तरह का जो भ्रम है उसको दूर किया जाए और उत्साह और जोश बराबर जारी रखे, जिससे नेचुरली है श्रद्धालुओं के लिए भी इस तरह के जो अभियान होते हैं वो उनके उस मनोबल को जहाँ कई बार तोड़ने की कोई कोशिश भी करता है, या किसी तरह के जो व्हाट्सएप के मैसेज चलते हैं, बाकी चीजें उसमें थोड़ा हो जाता है कई बार सवाल जवाब, बाकी चीजें व्यवस्थाओं को लेकर कई जो श्रद्धालु हैं उनको कई बार व्यवस्थाओं या गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता होता है। इसीलिए कोशिश बराबर जो सरकार की या एजेंसियों की होती है कि वो हर दम ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को सही गाइडलाइन मिले, श्रद्धालुओं के जो भी प्रबंध किए हैं उनको आसान किस तरह से बनाया जा सकता है। और खास तौर पर अब ये जो बयान है ये सामने जब आया है तो इसने एक अच्छा उत्साह भी भर दिया है, क्योंकि उन्होंने खास तौर पर ये कहा था कि चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुण टाप, पिशु टाप, पंचतरणी और पूरे ये यात्रा के जो मार्ग है ये अपने आप में ही धार्मिक और अध्यात्मिक, और उसके अलावा जो गुफा के दर्शन है, बाबा बर्फानी की गुफा के जो दर्शन है वो सबसे बड़े हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने भी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार ने भी यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा, ठहरने, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं जो है उनको उनके व्यापक प्रबंध किए हैं, और कोशिश है कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो जवान भी है वो अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं और यात्रा सुचारू रूप से संचालित भी हो रही है, जिसका प्रमाण श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या जो दूसरे हफ्ते में लगभग 4 लाख के करीब पहुंच गई है, तो वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी कामयाबी है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी यात्रा से जुड़े संस्थानों के लिए और खासतौर पर स्थानीय लोगों के लिए, उसके अलावा जो भी कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या उसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जो बाहर की आई संस्थाएं हैं, जो लंगर और बाकी कार्य में व्यस्त हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक कामयाबी ये भी है कि इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु ने दर्शन कर वापसी भी की है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो खास तौर पर यही है कि जो यात्रा है वो सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सता रही है तो वो सिर्फ मौसम का जो रुख है अभी तक का, लेकिन अब इस बीच जो ये भविष्यवाणी आई है, हालांकि बार बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बार बार कहा एजेंसियों को अपनी जो विजिट्स में ये कहा है कि मौसम की जो भविष्यवाणी होगी, जो भी मौसम विभाग आपको कहेगा आप उसी के अनुसार यात्रा को बिल्कुल उसी के अनुसार चलाइए। तो खासतौर पर ये जो खास ये आई हुई है भविष्यवाणी, इसमें 21 जुलाई से 23 जुलाई तक कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में सख्त बारिश के आसार है, वहीं जम्मू डिवीजन में भी क्योंकि बरसात का आगमन भी है यहाँ, तो उसकी वजह से यहाँ भी जरूरत है बारिशों की, जिसकी वजह से यहाँ 20 जुलाई से ही 23 जुलाई तक सख्त बारिशों की भविष्यवाणी है। और इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी नजर रहेगी एजेंसियों की, ताकि तीर्थ यात्रा जो है, हालांकि अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बहुत कम भी हो गया है, बहुत इसमें जो बाधाएं थी उनको कम कर दिया गया है, टनल्स भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन इसके बावजूद जो भी यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यात्रा को चलाने के फैसले लिए जाते हैं उनमें कई बार स्थानीय लोगों को तकलीफ का भी सामना होता है, जो इस एरिया में लोग रहते हैं बहुत से एरियाज में, उन लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व और सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है वो श्रद्धालुओं को दी जाती है, ताकि उनका जो काफिला है वो बहुत आसानी के साथ,
1: फिर कश्मीर के जो भी निवासी हैं वो तो यात्रियों का हमेशा मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं,
0: वो तो सदियों की हमारी रिवायत है मेहमान नवाजी की, उसको बिल्कुल निभाया जा रहा है, तभी ये यात्रा इतने बिल्कुल बहुत अच्छे माहौल में और बहुत बेहतर वातावरण में बराबर यहाँ से निकल भी रही है और बाबा के दर्शन कर वापस भी लौट रही है।
1: बहुत शुक्रिया जावेद महराब साहब, हम तक ये सारी तफसीलात पहुँचाने के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तब तक के लिए हम आप श्रोताओं हमसे बने रहिए और जावेद साहब का शुक्रिया करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। इस बीच हम अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इतने में हमारे रामबन के जो संवाददाता है मोहम्मद तस्कीन साहब, हम उनसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानना चाहेंगे आज की स्थिति के हवाले से। तो तस्कीन साहब, क्या सूरत हाल है?
1: बिल्कुल सूरत हाल बेहतर है और ट्रैफिक चल रहा है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से बात करेंगे तो पूरा ये जो क्षेत्र है रामबन बनाल का सेक्टर कहेंगे से, तो ये सुबह से अबरा आलूद और धूप भी बीच बीच से निकल रही है, लेकिन मजमू तौर पर थोड़ा जो शुभ डिग्री का सा माहौल है सुबह से ही। अलबत्त यहाँ बनाल के इलाके में हवाएं चल रही है, लेकिन रामबन वगैरह जब नीचे की तरफ हम जाएंगे तो गर्मी में शिद्दत है आज। तो इस दौरान जो ट्रैफिक का जो श्री अमरनाथ यात्रा के कश्मीर की तरफ जो दोनों काम से जाने वाले थे आज सुबह जो निकले थे, तो वो करीबन 12:30 और 1:30 बजे के दरमियान बनहाल से क्रॉस होकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कोहतर गुफा और बालतक की तरफ रवाना किए जा रहे। 148 गाड़ियां आई थी, कुल मिलाकर 3632 यात्री थे। इसी तरह जो वापस पहलगाम और बालतल से जो श्री अमरनाथ यात्री दर्शन के बाद वापस आ रहे हैं, तो उनकी भी गाड़ियां पहलगाम काटला तो जम्मू के करीब पहुंचने वाला है, जबकि जो बालतल वाले हैं तो वो अभी कुछ वक्त पहले यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट से होकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए और हाईवे से होकर वो

0: जम्मू की तरफ निकल रहे हैं।
1: जी जी।
0: इस दौरान जो हाईवे पर कट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल का इतलाक वो शुरू हो गया 3 बजे से, जैसे जो जम्मू से एलएमवीज या जो टूरिस्ट जो एलएमवीज में जो टूरिस्ट या बड़ी गाड़ियों में जो टूरिस्ट आ रहे हैं या जो अनरजिस्टर्ड यात्री है जो रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्ट्रेशन के लिए वो कश्मीर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो ऐसी गाड़ियों को 2 बजे के बाद चंद्रकूट पर रोका जाता है। वहाँ ये सिलसिला पिछले 1 घंटे से जारी है और वहाँ पर जो भी 2 बजे के बाद वहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु की गाड़ी हो या कोई टूरिस्ट की गाड़ी हो तो उन्हें वहां पर रोका जा रहा है। तो इसी तरह यही जो कानून है, यही जो रिस्ट्रिक्शन है वो बानहाल में भी, और बानहाल काजीगुंड टनल 3 बजे के बाद क्रॉस करने की कुछ इजाजत नहीं होती है, न टूरिस्ट गाड़ी को ही और न यात्रा गाड़ी को ही इन्हें रात भर रोका जाता है। सुबह किंतु मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग करीबन 5-6 बजे 6:30 बजे तक यहाँ से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त में कश्मीर की तरफ रवाना किया जाता है। जो कट ऑफ टाइमिंग के बाद यहाँ पर यात्री और बाकी टूरिस्ट रोके जाते हैं उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम है, रहने का इंतजाम है बानहाल में भी और चंद्रपुर रामबन में भी, इसलिए ये मतलब यात्रियों को कोई दुश्वारी नहीं होती। रोकने के बाद इन्हें प्रभाजा ताला इंतजाम का वो रखा गया है, पहले ही इंतजाम है, वहाँ पर खड़ी खड़ी होती है तो इनके लिए वो
1: तस्कीन साहब क्या आपने यात्रियों से बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो संतुष्ट हैं जो भी उनके लिए इंतजाम किए गए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, दर्जनों यात्रियों से अब तक बात हुई तो हर एक का यही है कि इंतजाम से बहुत खुश है क्योंकि बहुत आला किस्म के इंतजाम है, किसी किस्म की कोई कमी पीछे रखी नहीं गई है। पूरा जो चाहे सुबह जम्मू से हम जब लखनपुर से ये यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल होती तो वहाँ से पूरा जो उनका यात्रा रूट है चाहे भगवती नगर हो उसके बाद फिर चंद्रकूट का ये कैंप रखा गया है इनके लिए रुकने का हॉल्टिंग पॉइंट है ये, उसके बाद बानहाल का हॉल्टिंग पॉइंट है, तो किसी भी जगह से फिर कश्मीर में तो जगह जगह जैसे पहलगाम हो धुनवान हो ग्रेस कैंप रजो या उधर बालतल से तो हर जगह इनके लिए इंतजाम है। तो मतलब हर एक यात्री जो भी आ रहा है या जा रहा है वो जो सेवाएं रखी गई जो सहूलियात रखी गई जो इंतजाम रखे गए उनसे बहुत खुश है और अब तक किसी किस्म की भी शिकायत का मतलब मौका नहीं दिया है इंतजामिया ने किसी भी यात्री को जो यात्रा अब तक मतलब गुजर रही है।
1: जी जी, हम जानना चाहेंगे कि जो भी कानून वगैरह क्या यात्री जो है, चूंकि बार बार हम ये सूचना दे रहे हैं कि ये जो कानून है इन पे अमल कीजिए, क्या यात्री इस पर अब कुछ इसमें बेहतरी आई है आधार वगैरह आइडेंटिटी के हवाले से? जी
0: देखिए, मुल्क बहुत बड़ा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गाड़ियां आती हैं और बहुत सारी जो यात्री है अनरजिस्टर्ड होकर जा रहे हैं यहाँ से, गाड़ियां हजारों की तादाद में रोजाना होती हैं उनको वो कश्मीर की तरफ जाती हैं, तो रजिस्ट्रेशन का उनको जगह जगह ये सहूलियात रखी गई है चाहे बानहाल में हो फिर कश्मीर साइड में हो जम्मू में हो, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से होगा लेकिन बार बार इन्हें ये वार्न किया जाता है ये कि जब तक आपको अगर कश्मीर जा रहे हैं या अगर टूरिस्ट जा रहा है तो उसे होटल बुकिंग होना चाहिए, उसकी डेट ली गई होनी चाहिए, तब जाकर उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह जो दर्शन की गरज से पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं उन्हें भी क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन दें कि जब तक उनका नंबर नहीं हो, जब तक उनकी जो टर्न नहीं हो, जो शेड्यूल उनके लिए जारी किया गया हो वो काम की तरफ से उसी शेड्यूल के मुताबिक जाए और उससे पहले यहाँ आने की कोशिश न करें, यहाँ आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, तो इन पर अब अमल हो रहा है। लेकिन जो बहुत सारे गाड़ियां हैं जो है सैकड़ों की तादाद में, हम रोजाना कहेंगे हजारों की तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो उसमें मतलब कश्मीर की सयाहत भी करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग जो है पवित्र गुफा को भी जाते हैं, जैसे आज सुबह तक हम कहेंगे बानहाल के ये जो बेस कैंप है जम्मू का भगवती नगर का, वहां से 1,12,000 से जायद यात्री अब तक पिछले 16-17 दिनों में आए हैं जो उनके मतलब सिक्योरिटी सेटअप में अगर मजबूत तौर देखेंगे तो अभी 3.5 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारा जो सिक्योरिटी बंदोबस्त में ट्रैफिक आ रहा है, यात्रा का ट्रैफिक आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा वो ट्रैफिक है जो इस बंदोबस्त से हटकर आ रहा है, जो खुद मनाफे तौर से आ रहे हैं और उनको यहाँ पर हाल्ड कराया जाता है बानहाल और चंद्रपुर में सिक्योरिटी रीजन की वजह पर, तो सुबह उनको यहाँ से कश्मीर की तरफ भेजा जाता है।
1: बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब हमसे जुड़ने के लिए, आप श्रोताओं बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ यात्रा जी का ये विशेष प्रसारण। इस बीच हमारे एक और संवाददाता इमरान नायकू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे यात्रा के हवाले से जो सूचनाएं हैं वो यहाँ तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इमरान नायकू साहब, श्रीनगर से क्या अपडेट्स हैं यात्रा के हवाले से?
1: थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा का आज 16वां दिन है, और जहाँ तक श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप का ताल्लुक है, यहाँ से आज अमरनाथ जी यात्रियों के अलग अलग जत्थे एक तो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए, वहीं कल शाम को जो यहाँ यात्री ठहरे थे इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में, तो उन्हें भी आज श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया। यानी जो नेशनल हाईवे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वहां से हैवी कॉन्वॉय के बीच में उन यात्रियों को वापस भेजा गया जिन्होंने अमरनाथ जी गुफा का दर्शन मुकम्मल किया है। इसके अलावा आज यहां जो यात्री मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आए हैं वो यहां नाइट स्टे करेंगे, और साथ साथ आज अमरनाथ जी यात्रियों को यहां से पवित्र गुफा के दर्शन के रवाना किया गया है अलग अलग जो कॉन्वॉयज है उनमें, और इन यात्रियों में मेल फीमेल और साधु साधवीज और कुछ बच्चे भी शामिल थे जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए हैं अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए। इसके अलावा इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में, जैसे कि हम पहले दिन से बता रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ हर तरह की सरकार ने या प्रशासन ने सुविधाएं रखी है, वो चाहे हम लंगर देखे, वो चाहे खाने पीने की चीजें देखे, वो चाहे हम यहाँ कम्युनिटी किचन की बात करें, सैनिटेशन, या फिर यहाँ हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। और यात्रियों से मुसलसल हमारी बात हो रही है यात्रा को लेके, और जो प्रशासन की इन अरेंजमेंट्स को लेके अभी तक अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं।
0: जी, ये बहुत ही खुशायंद खबर है हमारे लिए कि हमारे जो भी ये मेहमान है, हमारे

0: यात्री ये संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे मजीद के मौसम के हवाले से क्या कुछ अहवाल है श्रीनगर में।
1: जी बिल्कुल, जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, सुबह से ही यहाँ मौसम जो है वो बिल्कुल साजगार है और धूप खिली हुई है, और इसके अलावा आज थोड़ी सी श्रीनगर में ठंडी हवाएं भी चल रही है, और इस साजगार मौसम के बीच में आज अमरनाथ यात्रियों को यहां से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मजीद जो जत्थे हैं वो श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैब में पहुंचे हैं, जो यहां पे नाइट स्टे करेंगे।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान नायकू साहब, आप हमसे जुड़े और हम तक ये जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाई। फिर से आपसे जुड़ेंगे, तो तब तक के लिए श्रोताओं आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ कठिनाइयाँ नज़र नहीं आती, बल्कि कठिनाइयाँ भी आसाइशों में बदल जाती हैं। श्रोताओं, इस बीच हम तक ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट जो है वो प्राप्त हुआ है हमें, उसके अनुसार आप तक आंकड़े पहुँचाएंगे। अभी तक जो है कुल 12,743 यात्रियों ने जो है बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं, जिनमें 9,413 पुरुष, 2,761 महिलाएं, 182 बालक, 80 साधु, 17 साध्वियां, 4 ट्रांसजेंडर और 286 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, और आप जिस भी मोड़ पर हमें सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आपकी यात्रा सफल रहे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आप

0: अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
1: जय जय बाबा बर्फानी।
2: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त चला है एक और भजन का।

श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ। श्रोताओं, यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चूँकि प्रकृति हमारी अमानत है, इसे सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए श्रद्धा के साथ स्वच्छता का भी संकल्प लें और इस धरती की सुंदरता को कायम रखने में अपना योगदान जरूर पेश करें। आप सुनते रहिए अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, मुझे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बात याद आई। वो अपनी पुस्तक गीतांजलि में एक जगह पे लिखते हैं कि मैं सोया तो सपना देखा कि जीवन आनंद है, जब जागा तो जाना जीवन सेवा है, और जब सेवा की तो अनुभव हुआ कि सेवा ही आनंद है। इसलिए हम भी आपकी सेवा में लगे हैं, और आप भी एक दूसरे की सेवा कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी जाके जो है ये यात्रा आप सब के लिए और हम सब के लिए जो है सफल रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनते रहिए मधुर भजन।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। अभी अभी जो दर्शन रिपोर्ट ताज़ा तरीन हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार आज आपको बताते चले कि कुल 14,055 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए, जिनमें 10,332 पुरुष, 3,107 महिलाएं, 200 बालक, 87 साधु, 17 साध्विया, 5 ट्रांसजेंडर और 307 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा हमें धीरज, अनुशासन, सेवा, एकता और मानवता का पाठ पढ़ाती है। मुख्तलिफ राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आए यात्री एक ही भाव के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही भारत की एकता और आदमियातिक विरासत की सबसे खूबसूरत पहचान है। हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने कुछ यात्रियों से भी बात की है। कुछ देर में हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करें, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।

0: श्रोताओं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश की है, आइए उनके तासरात, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे, हर चीज की बहुत व्यवस्था
2: बाटे हैं। और हम सब फरीदाबाद से हैं और शिव शंकर सेवा दल ताल से ये पूरा इसमें चादर के साथ पूरी वाटर प्रूफ टेंट है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सब मतलब इंतजाम में राशन वगैरह तो हम सब लाते हैं, प्रशासन से ये यही सहयोग मिलता है कि हमारे साथ खड़े हैं। वो सेफ्टी के लिए पूरी रात यहाँ पे हमारे आर्मी के जवान खड़े हैं, तो उनका सहयोग भी हमें बहुत है। वो 24 घंटे वहाँ से 24 घंटे इस एरिया में इसको कवर करके रखा हुआ है, तो हम लोगों की सुरक्षा में तो यहाँ की जो प्रशासन है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें हम धन्यवाद करते हैं।
3: सर जी कोई रुके नहीं, फुल सिक्योरिटी है, जेट सिक्योरिटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, भंडारा सब अच्छा है अभी यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। चाहिए बाबा के दर्शन के लिए हर बार आना चाहिए,
4: बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग पहली बार आए अभी, खुश
5: आशा कुमारी है, मैं नवादा बिहार से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था देखकर, बहुत अच्छा प्रशासन का भी और यहाँ
6: के सेवादल प्रधान संजय शर्मा, सरपंच प्रकाश लाल शर्मा की ओर से सभी भोलेनाथ के भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आपकी बात का जो जैसे आपने बात करी है, जैसे यात्रा हमारी खुलती है जनवरी में, 1 जनवरी से हम इंतजार में रहते हैं कब बाबा जी के दर्शन होंगे और हम तैयारियों में चालू हो जाते हैं। रही दूसरी बात, जिला रामबन जम्मू कश्मीर में जब 2014 की बात, बहुत चेंजिंग आई है जब से हाईवे बने हैं, हमारा प्रशासन आर्मी हाईवे बने हैं, जब से टनल्स बनी है तो यात्रा बड़ी सुगम हो गई है। जगह जगह यात्रियों को, पहले हम टॉयलेट नहीं होते थे, जगह जगह परेशानियां होती थी, बहुत सुगम हो गई है। यात्रियों के लिए बहुत सुविधा का ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करूंगा। और डोभाल जी खासतौर पर जो जिनके मार्गदर्शन से जगह जगह पे कोई ट्रैफिक नहीं रहता, कोई स्मूथ एकदम कार्रवाई में यात्रा चलती है, रात को चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे आप चलेंगे जिला रामबन में, एक एक यात्री का बहुत ध्यान रखा जाता है, उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। खास तौर पे हमें कहा गया है भंडारे वालों को, यात्री किसी भी टाइम आए, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उनको सुख सुविधा के हिसाब से जैसा प्रसाद हो दिया जाए, तो हम प्रशासन का, पुलिस का, खास तौर पे अपनी आर्मी का, जवान हमारी शान, ये जो है इस, ये मेरा तकिया कलाम है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। और ये हमारा भगवा जिसकी वजह से रात्री है, हम हमारे जितने भी संत समाज गए हैं यात्रा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मैं मोदी जी का फिर से धन्यवाद करूँगा जिनकी वजह से आज हमारी यात्रा जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के माध्यम से। आप तक मौसम के हवाले से सूचना पहुंचाते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू से बटवुत तक आसमान आंशिक से सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा। कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के की संभावना है। बटवत से अनंतनाग, पहलगाम और पवित्र गुफा तक दोनों यात्रा मार्गों पर आसमान आंशिक से सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा। चंदनवाड़ी, शीशनाग, पोषपत्री, पंचतरणी, संगम, दुमेल, ब्रारीमर्ग समेत

सभी पड़ाव पर भी मौसम आमतौर पर उबर आलूद रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। आपसे विनती है कि आप मौसम के मिजाज के अनुसार अपने साथ गर्म कपड़ों का ख़ास ख्याल रखें और आपके साथ जो अनुषिक दवाइयाँ होती हैं उनको भी अपने साथ रखना ना भूलिए। और आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, वक्त हो चला है ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट का। दर्शन के हवाले से आप तक सूचना पहुँचाते हैं। आज 4 बजे तक रिपोर्ट के अनुसार कुल 15,127 यात्रियों

ने पवित्र गुफा के दर्शन मुकम्मल किए हैं, जिनमें 11,151 पुरुष, 3,324 महिलाएं, 211 बालक, 96 साधु, 18 साध्वी, 5 ट्रांसजेंडर और 322 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि प्रशासन और सुरक्षा बलों की जानिब से दी गई हिदायतों पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि ये सब हमारी ही हिफाजत के लिए होते हैं। सिर्फ निर्धारित यात्रा मार्ग का ही इस्तेमाल करें, जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है। इसके अलावा अपने यात्रा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव के मद्देनज़र गर्म कपड़े, रेनकोट और आवश्यक दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखें। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी, मार्गदर्शन या किसी भी सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं ये नंबर, 9596990954। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण मेरे साथ, और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। आप हमें सुन सकते हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा एआईआर की आराधना चैनल और डीटीएच के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे होंगे। श्रोताओं, अगर मन में आस्था और दिल में विश्वास हो तो हर कठिन राह भी आसान महसूस होने लगती है। रास्ते में मिलने वाला हर सहयोग

हर मुस्कान और हर सेवा का भाव ये याद दिलाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। आइए इस मुकद्दस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित ये विशेष प्रसारण। फिर से वक्त हो गया है दर्शन रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का। तो श्रोताओं, आंकड़ों के अनुसार आज 5 बजे तक कुल 15,919 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए, जिनमें 11,731 पुरुष, 3,496 महिलाएं, 224 बालक, 100 साधु, 18 साध्वियाँ, 5 ट्रांसजेंडर और 345 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्यकर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में

एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षी ग्रीनिना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता परभाग्योपजीविषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए।

परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: धर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा पर पांडे की
1: जय हो,
0: पार्वती पते
1: हर हर हर महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंबस्य ममावलंबं विभाजिताजेत विभत् कदंबं मदीय पापा जलपाद जंबं प्रवर्तताम् वाचि सदैव बं बं महादेव।

0: की
1: की जय।
0: सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, आध्यात्मिक यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि मन और हृदय से पूरी होती है। जब मन में प्रेम, विनम्रता, सेवा और समर्पण का दीप जल उठता है, तब हर कदम साधना बन जाता है और हर मंजिल ईश्वर के करीब ले जाती है। इसी संदेश के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आप सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदरायना पुत्र श्री कृष्ण ने अमारा पति बनाओ, अमे तमने प्रणाम करीए छे। आ कात्यायनी नो संदर्भ श्रीमद भागवत में आवी रीते जोयो। मातंगी देवी, मातंगी

शरणागतनी पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगतनी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमें चराचर जगतना स्वामीनी छो।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया,

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड रिदम पर मधुर एके, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय। आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

अपने

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्य।